0: कॉमेडीज बनाना बहुत अच्छी तरह आता है, जैसे अभी चटनी फ्रॉम धमाल 4, भोजपुरी फ्लेवर, फुल ऑन मजे, एंड गाना चलेगा, फिल्म अपना काम कर जाएगी, एंड देन यू हैव अ वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। इसके बारे में ज्यादा कुछ वैसे अब कहने को है नहीं, फिल्म आई फिल्म गई, इन गाना रह गया नंबर 9 पर।
1: नंबर 9 सुर माया खच जद पाओ मुंडे तक कहंदे ने जी वाओ, बण मोर नी जी जिद्दर नु जाओ मुंडे तक कहंदे ने जी वाओ।
0: लेकिन फिर कुछ फिल्में होती हैं जो सिर्फ रिलीज नहीं होती, एक दौर को डिफाइन कर देती हैं। इस हफ्ते लोग एक फिल्म के 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुल्तान। और मुझे लगता है ये सेलिब्रेशन सिर्फ सुल्तान का नहीं है, ये उस सलमान खान का है जिसके सामने बॉक्स ऑफिस ने घुटने टेक दिए थे। वांटेड, दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो। उस वक्त फिल्म कितनी अच्छी थी ये फ्राइडे के बाद पता चलता था, लेकिन फ्राइडे से पहले एक बात सबको पता होती थी, सलमान खान की फिल्म एक त्योहार है। फिर सुल्तान आई और आज अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो लगता है कि वो सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, शायद वो एक ईरा का लास्ट स्टैंडिंग ओवेशन था। उसके बाद हिट से ज्यादा सवाल आए ऑन फिल्म्स लाइक रेस 3, दबंग 3, अंतिम, राधे, किसी का भाई, किसी की जान, एंड देन सिकंदर। और पिछले 10 सालों से फैंस सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, दैट वन सलमान खान फिल्म जो थिएटर्स में वो पागलपन फिर क्रिएट कर दे, जिसके बाद पूरा देश सिर्फ एक ही बात कहे, भाई इज बैक। मेरा पिक ऑफ द वीक उसी फिल्म से है जिसके 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं सब, पापॉन की आवाज में। दिस इज बुल्लेया फ्रॉम सुल्तान, अ विशाल शेखर कॉम्पोजिशन।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 8

यार एक बात माननी पड़ेगी, इट फील्स सो गुड टू हियर नीरज श्रीधर वॉइस अगेन, लेकिन इसी गाने ने मुझे एक सच्चाई से मिलवा दिया। हॉलीवुड अपने लेजेंड्स को सेलिब्रेट तो बहुत करता है, बस उन्हें हायर करना बंद कर देता है। नीरज श्रीधर की आवाज आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है, फिर नए गाने उनके पास क्यों नहीं जाते? और सिर्फ सिंगर्स ही नहीं, कंपोजर्स भी। एक सवाल आप खुद से पूछिए, आखिरी शंकर एहसान लॉय एल्बम आपने कौन सी सुनी थी, जिसके गाने आपने रिपीट पर सुने, जिसके लिरिक्स आज भी याद है आपको? सितारे जमीन पर जो आमिर खान की फिल्म थी उसमें उन्हीं का म्यूजिक था, लेकिन एल्बम वैसे कनेक्ट नहीं कर पाई जितना सबने सोचा था। और उसके बाद इंडस्ट्री फिर नए नामों की तरफ मुड़ जाती है। अजीब बात है राइट, अब से एक महीने बाद वी ऑल विल बी सेलिब्रेटिंग 25 इयर्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स एवर।

है कहर बाय गुरु रंधावा और शायद यही आज के बॉलीवुड म्यूजिक का टेम्पलेट है। नंबर 6।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5

शरारत 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, लगा ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. And then तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. My special request of the week is the same team that is giving us Ve Junoon in Awarapan 2. Imran Hashmi aur unke saath is gaane ke composer Mithun. Aur isi combo ne ek aur gaane mein jadu bikhera tha. Jab kai baar dil tootne ke bawajood phir mohabbat karne chalta hai. Special request.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3
2: तो

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलो यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। एंड पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग दैट नाउ मोर देन एवर बिफोर। यू नो दे डिड काइंड ऑफ इन लाइक 13-15, देयर वाज लुटेरा एंड रामलीला इन 2013, देयर वाज दिल धड़कने दो बाजीराव मस्तानी इन 15, नाउ इट्स लाइक खिलजी, सिम्बा एंड कर्नी बॉय। इट्स लाइक wow, so it's a conscious endeavor to you know showcase that versatility and it's all happening, so I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer, ab wo superstar ban chuka tha, use apne talent ka andaaza tha, use pata tha ki wo kitna acha actor hai, Ronis ki jagah yakeen aa chuka tha, lekin uski energy abhi utni hi badi thi jitna uska ambition, lekin abhi wo bechain tha. Aur phir aaya teesra Ranveer, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। आई टोल्ड यू, आज वी अबाउट टू गेट अ ब्रांड न्यू नंबर वन सॉन्ग। ठीक है, ये गाना ब्रांड न्यू है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा नंबर वन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। द नंबर वन सॉन्ग ऑन द मिर्ची टॉप 20। नंबर वन।

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। इट्स टाइम टू एंड दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, बट फिर मिलूंगा। इनफैक्ट मैं भी वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, बजा।

चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एच सर्विस टेक योर टाइम शारी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. Yeah. You already know what it is.

0: सारा मेरा उप्स।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

It's hot. Mirchi. It's hot.

0: Mitchie. It's hot.
1: इन तो ले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर अब बारी है फॉर असली पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑफकोर्स एज अ स्पेशल स्पॉटलाइट। ऑल दिस एंड मोर, तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है साडी सुन। तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार साडी सुन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी पांच हफ्तों से इस काउंटडाउन पर अपना धावा बना के बैठा है। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर
2: 10। हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: कहाँ है वो लोग, नजर नहीं आ रहे जो बोलते रहते हैं कि सारे इंडिपेंडेंट गाने एक ही जैसे साउंड करते हैं। ये वाला सुनिए, अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। व्हाट अ बैंगर ऑफ अ सॉन्ग, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, पूरे दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, तो वही गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स बाय एन आर्टिस्ट जिनकी आवाज सुनते ही ना, मतलब मेरे को एकदम वो मजे आ जाते हैं। यू नो देयर आर दीज वॉइसेस व्हिच मेक यू फील रियली हैप्पी। वो बोलते हैं खनक है उनकी आवाज में। आई एम टॉकिंग अबाउट एश किंग, जिन्हें मोस्ट पॉपुलरली हम जानते हैं एज वॉइस बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
2: आई लव यू,
0: कुछ बात उनकी आवाज में सुनते ही ऐसा मूड अच्छा हो जाता है। एंड इस आवाज को ढूंढ के हमारे पास लाए थे AR रहमान। साल 2009 में दिल्ली 6 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया था। एंड द फनीएस्ट पार्ट अबाउट दैट कोलैबोरेशन इज दैट उस समय एश किंग की हिंदी डिक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, वो बस UK से आए थे, बट AR रहमान सर ने उन्हें सुना एंड ही वॉज लाइक आप मेरे लिए ये गाना गा रहे हैं। एंड तब एश किंग ने AR रहमान के लिए ये वाला गाना गाया। गाने का नाम है दिल गिरा दफतन। दिल्ली 6 की बहुत बड़ी एल्बम मसक अली अर्जियां के पीछे अगर इस गाने को भूल गए थे तो वापस इसको याद कर लीजिए। तब से लेके अब तक एश किंग हैज बीन द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ द ग्रेट सॉन्ग्स लाइक मेहरबान, TMO। 2019 में उनका एक इंडी पॉप गाना आया था कॉल्ड हाई ओए।

There's something about Ash King's voice which just naturally draws you towards this song. आप connect कर जाते हो. वो कभी गाने पे हावी नहीं होते हैं, बल्कि he lets you experience that song. तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए. नई नवेली entry debut कर रही है सीधा Ash King की आवाज में. एक गाने का नाम है Kinya Soni. ये गाना debut कर रहा है this week on Gaana number 8. You are listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है Kanika. Enjoy. Number 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7 7

0: आदित्य रिखारी कुटले खां की आवाज, रावटोर का म्यूजिक, कोक स्टूडियो भारत का गाना, दिस वाज ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना अनूप जैन की आवाज में, गाने का नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है वाज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। This is the Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है RJ Kanika। This is the show which is all about the hottest pop music of the week, all about the hottest pop stars of the music scene। Instagram पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल is @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना ए अजनबी इन द वॉइस ऑफ आदित्य रिखारी एंड कुटले खां, एक कोक स्टूडियो भारत का गाना। किसी भी आर्टिस्ट के लिए गाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर आर्टिस्ट का सपना होता है एक कोक स्टूडियो भारत का गाना करना, एंड आदित्य रिखारी पिछले कुछ ही सालों में वो चोजन पॉप स्टार बन चुके हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ना, ये स्टार बनने के मायने बदल गए हैं। स्पेशली पॉप म्यूजिक में रिवाइंड करूं, 20 साल पहले आप चूज किए जाते हो, आपकी एल्बम आती है, आपको ब्रेक मिलता है, तब आप फेमस होते हैं। लेकिन अब पहले ऑडियंस आपको देखती है, डिसाइड करती है, आपके साथ एंगेज करती है, तब आपको आपका ब्रेक मिलता है। एंड आदित्य रिखारी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली के एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर लॉकडाउन के दौरान अपने कमरे से अपने गाने अपलोड कर रहे थे, पर उनके गाने ऐसे फॉरवर्ड हो रहे थे, वायरल हो रहे थे हर जगह, बिकॉज वो हमको हमारी ही कहानी सुना रहे थे। एंड देन उनका गाना आया कॉल्ड फासले। इस गाने ने उनको म्यूजिक मैप में पिन कर दिया था, एंड देन केम समझो ना। इस गाने के बारे में तो मैं जितनी बात करूं कम है। इट गॉट अडैप्टेड इन अ कार्तिक आर्यन मूवी, जो एक दिल्ली से आए यंग सिंगर सॉन्ग राइटर के लिए बहुत बड़ी बात है। पर मेरे हिसाब से आदित्य रिखारी का सबसे बड़ा गाना इस साहिबा। उनके जितने कॉन्सर्ट होते हैं, वो जब भी इंटरव्यू करते हैं, आप कहीं चले जाए, एक गाना जो हर फैन उनसे डिमांड करता है कि प्लीज ये वाला गाना गा दीजिए, वो गाने का नाम है साहिबा। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन आदित्य रिखारी बेस्ट सॉन्ग, दिस इज साहिबा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

आदित्य निगारी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, दैट वॉज साहिबा। दिस सॉन्ग इज अ रिमाइंडर दैट एक अच्छे गाने को किसी बड़ी फिल्म या बड़े हीरो की जरूरत ही नहीं होती है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आदित्य निगारी ऐसे और एग्जाम्पल्स हमको देते जाएंगे। काउंटडाउन में आगे बढ़ते हैं। अगले वाला गाना इज बाय संजू राठौड़, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैंगल्स। 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 5.

शरारत। 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया, आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, लगा ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. एंड देन तीसरी बार आई हैड गूज़बम्प्स. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. My special request of the week is the same team that is giving us Ve Junoon in Awarapan 2. Imran Hashmi aur unke saath is gaane ke composer Mithun. Aur isi combo ne ek aur gaane mein jadoo bikhera tha. Jab kai baar dil tootne ke bawajood phir mohabbat karne chalta hai. Special request.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नंबर 3।

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत मनाता है, लेकिन एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूँ यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Ramlila in 2013. Yeah. There was Dil Dhadakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Karni Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility, and it's all happening. So I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Use apne talent ka andaaza tha. Use pata tha ki wo kitna achha actor hai. रॉनस की जगह यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन, लेकिन अब भी वो बेचैन था। और फिर आया तीसरा रणवीर, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। I told you, आज we about to get a brand new number one song। लेकिन ये गाना brand new है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा number one होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। The number one song on the Mirchi Top 20. Number 1.

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। It's time to end this episode of the Mirchi Top 20, but फिर मिलूंगा। In fact, मैं भी वापस आऊंगा। So until the next time, Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot. Mirchi, it's hot.

Mirchi. It's hot.

0: Mitchy. It's hot.
1: Do tole ki mundri la de, tin tole.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: संजय कुमार, फॉलो मी ऑन माय चैनल।
1: मिर्ची, इट्स हॉट। 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

देखो मौसम जो है ना कभी कभी रिलेशनशिप की तरह बिहेव करता है। सुबह थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, दोपहर तक आते आते काफी क्लैरिटी आ जाती है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, ये है मिर्ची मॉर्निंग। जरा अभी टेम्परेचर जो है फिलहाल 64 डिग्री फारेनहाइट है, स्काइज आर मोस्टली क्लाउडी, लेकिन ट्विस्ट ये है कि फील हो रहा है 66 डिग्री फारेनहाइट तक थैंक्स टू ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन। गुड न्यूज ये है कि रेन की जीरो टेंशन है, पिछले 24 घंटों में भी 0 मिलीमीटर्स की बरसात हुई एंड अगले 24 आवर्स के लिए भी अम्ब्रेला को आज छुट्टी मिल गई है। देखो सुबह से लेकर 3 बजे तक ब्राइट सनी कंडीशंस रहने वाले हैं। अगर तुम ऑफिस जा रहे हो, किड्स को कैंप ड्रॉप करने जा रहे हो या ग्रोसरी रन के लिए जा रहे हो, दिस इज योर गोल्डन विंडो विच इज प्रिटी ह्यूज। शाम तक स्काई जो है वो पार्टली क्लाउडी हो जाने वाले हैं, परफेक्ट एक्सक्यूज फॉर एन इवनिंग वॉक या बैकयार्ड चाय सेशन। आज का टेम्परेचर रेंज रहने वाला है 63 से लेकर 86 डिग्री के बीच में, लेकिन फील होगा 64 से लेकर 88 डिग्री फारेनहाइट तक। ये याद रखो कि तुम्हें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है और अपना SPF 50 ++++ लगाकर ही बाहर जाना है। एंड ऑफ कोर्स मिर्ची सुनते रहना है मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में, और मुझसे ऑफ एयर ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हो तुम। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 Double 4. Right now, stay tuned and stay hot.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा।

0: रानी जी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है
1: बचपन दी बात और सी
0: यार 10 साल हो गए
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ फोन ते गल करती हूँ
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। यू हैंगिंग आउट विद मी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो देखते हैं ऑन दिस डे हिस्ट्री में कैसे कैसे प्लॉट ट्विस्ट्स हुए थे। 1787 में अमेरिका ने नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस पास किया, जिसने नई टेरिटरीज को फ्यूचर स्टेट्स बनने का रोड मैप दिया। 1793 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जर्नलिस्ट और रेवोल्यूशनरी जॉन पॉल मारा को उनके बाथटब में ही असैसिनेट कर दिया गया। 1863 न्यूयॉर्क सिटी में शुरू हुआ ड्राफ्ट रायट्स, सिविल वॉर के मिलिट्री ड्राफ्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट, और अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री के सबसे वायलेंट सिविल डिस्टर्बेंसेस में से एक बन गया। 1930 में फुटबॉल फैन सुनो, पहला एवर फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वाई में किक ऑफ हुआ। तब से लेकर आज तक, लिटरली आज तक, ऑफिस प्रोडक्टिविटी और फुटबॉल फीवर का रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड सा चल रहा है। नहीं, 1955 में रूथ एलिस ब्रिटेन की आखिरी वुमन बनी जिसे कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। 1973 में अलेक्जेंडर बटरफील्ड ने वाटरगेट हियरिंग्स के दौरान व्हाइट हाउस की सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स का राज खोल दिया। 1977 और न्यूयॉर्कर्स, याद रखो आज ही के दिन एक मैसिव लाइटनिंग स्ट्राइक ने न्यूयॉर्क सिटी को 25 घंटों के ब्लैकआउट में डाल दिया था, विदाउट एनी वाईफाई, विदाउट एनी नेटफ्लिक्स, ये सब उस टाइम था भी नहीं, लेकिन असली सर्वाइवल मोड तो तभी था। 1985 और फाइनली लाइव एड कॉन्सर्ट लंदन और फिलाडेल्फिया से एक साथ हुए अफ्रीकन फैमिन रिलीफ के लिए। म्यूजिक ने दुनिया को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया है बल्कि यूनाइट भी किया है, और इसीलिए तुम और मैं भी जुड़े हुए हैं आगे आने वाले कुछ मिर्चीदार बैंगर्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: Mirchi, it's hot.

0: मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर कॉफी काफी स्ट्रॉन्ग है और फीफा का फीवर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: England booked their place in the semi-finals after a thrilling 2-1 extra time win over Norway. और हीरो कौन है? Jude Bellingham. दो गोल्स किए, including the winner in extra time. मतलब बंदा प्रेशर को मॉर्निंग चाय की तरह हैंडल करता है, सुड़क करके पी जाता है। उधर डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना भी सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं आफ्टर बीटिंग स्विट्जरलैंड 3-1 से। और हाँ, लाइनल मेसी वंस अगेन पुल्ड द स्ट्रिंग्स एज अर्जेंटीना केप्ट देयर टाइटल डिफेंस अलाइव। इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना अब सेमीफाइनल में फुल पैसा वसूल ब्लॉकबस्टर होने वाला है। गोल्डन बूट रेस भी

goals, Jude Bellingham is now up to 6, while Messi continues to add to his incredible World Cup legacy. मतलब कि talent यहाँ पर unlimited है जितने कि FIFA के fans हैं। तो बताओ तुम किस team के साथ हो? England, Argentina या बस office में secretly match देखने वाली team के साथ ही हो तुम? मैं पक्का से judge नहीं करूँगी क्योंकि मैं भी यही हरकतें करती हूँ। और off air football की मस्ती continue रखो, follow करो मुझे, Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर connect करो मुझे 9033 Mirchi पर, that's 9033 647244. फिलहाल stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। कैसे यार, वैसे जैसे भी हो तो मेरे अपने ही ना। अब देखो, इंडिया में इस टाइम शायद घर में सब लोग पूछ रहे होते, खाना खाया, परौंठे खाओगे, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना दे, चाय पी कि नहीं पी, दूसरा कप चाय हो गई है। लेकिन यहाँ अमेरिका में बॉस सिर्फ बॉस पूछता है, आर यू ज्वाइनिंग द मीटिंग। लाइफ ऑफ एन NRI, एक टाइम जोन में इमोशंस और दूसरे टाइम जोन में सिर्फ नोटिफिकेशंस। उफ। और वैसे भी यार, सुबह सुबह का रूल ना काफी सिंपल होता है, सबसे पहले उठते ही चाय या कॉफी मिल जाए, फिर कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि बिना कैफीन के तो पासवर्ड भी भाव खाता है यार। तो अगले कुछ घंटों के लिए ये स्ट्रेस जो है ना, इसे पार्किंग लॉट में छोड़ दो। यहाँ पर मिलने वाला है तुम्हें ढेर सारा बॉलीवुड का तड़का, मस्त म्यूजिक, गुड वाइब्स, काफी सारी मस्ती, थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया एंड वो फीलिंग जो घर से हजारों माइल्स दूर होकर भी घर जैसी फीलिंग देती है। और हाँ, ऑफ एयर भी हमारी दोस्ती पक्की हो सकती है, चाहो तो मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS, कहाँ पर, इंस्टा और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर अगर कनेक्ट करना है तो 9033 मिर्ची, दैट्स माय नंबर, 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, मेरा नाम है प्रिसिला, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और साथ में एक एक सिप चाय का मार के जल्दी से सुनते हैं अराउंड द वर्ल्ड की खबरें। रिपोर्ट्स के हिसाब से रशिया हैज सेंट इट्स हाईली सिक्योर 2214PU एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट टू ईरान। ये एयरक्राफ्ट सिक्योर कम्युनिकेशंस और इमरजेंसी कमांड ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग हाई रिस्क सिचुएशंस। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स लाइक दीज आर बीइंग क्लोजली वॉच्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड नंबर टू पर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड नोटिस टू द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एंड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट व्हाइल हियरिंग पिटिशंस related to allegations in a donation theft case. The court has also asked the special investigation team SIT to submit a status report. And finally, history has been served at the home of cricket. India's Yastika Bhatia has become the first woman ever to score a test century at Lord's. Unhone 113 runs ki brilliant innings kheli aur India ko strong position mein pahunchaya. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me Priscilla. Sun rahe ho Mirchi Mornings. Mujhse connect karo Insta aur X pe, mera handle है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: MP3.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की बॉलीवुड अपडेट में प्यार, ज़ॉम्बीज और डायपर्स तीनों की स्टोरी है। कैसे? रणवीर सिंह नेक्स्ट मंथ से डायरेक्टर जय मेहता की ज़ॉम्बी थ्रिलर प्रलय की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो दिवाली तक शूट करेंगे और उसके बाद लेंगे पैटर्निटी लीव। फ्रॉम फाइटिंग ज़ॉम्बीज ऑन स्क्रीन टू सर्वाइविंग स्लीपलेस नाइट्स ऑफ स्क्रीन, ट्रस्ट मी, बेबीज आर टफर क्रिटिक्स देन ज़ॉम्बीज। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दीपिका पादुकोण अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में है। फैंस उन्हें अपकमिंग फिल्म्स किंग और राका में भी देखने के इंतजार में हैं, तो वहां पर तो डबल सेलिब्रेशन चल ही रहा है। और सेलिब्रेशन की बात निकली है, तो अगर तुम भी किसी स्पेशल ओकेजन की प्लानिंग कर रहे थे या बस किसी को सरप्राइज देना चाहते हो, तो एक स्पार्कलिंग सरप्राइज अपडेट मेरे पास भी है। आरके जूल्स लेकर आए हैं एक अमेजिंग ऑफर, $250 का गिफ्ट कार्ड विद देयर एक्सक्विजिट कलेक्शन ऑफ स्टनिंग ज्वेलरी। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस तुम्हें मिलता है सिर्फ और सिर्फ आरके जूल्स पर, क्योंकि डायमंड्स हो या रिलेशनशिप हो, दोनों में शाइन बनी रहनी चाहिए। और शाइन की बात हो ही रही है, तो इंस्टाग्राम और एक्स पर जाकर मेरे प्रोफाइल पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, यानी कि जाकर मुझे फॉलो करें। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलते हैं मिर्ची दैट बैंगर्स सुनने के लिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। और अगर आज यानी कि 13th of July को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे टू यू है ना, तो मिर्ची की तरफ से, मेरी तरफ से तो हैप्पी बर्थडे है विद अ पप्पी एंड अ झप्पी। आज का दिन ऑफिशियली वीआईपी है क्योंकि आज बहुत सारे वीआईपीज तुम्हारे साथ अपना हैप्पी बर्थडे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले वी गॉट हैरिसन फोर्ड। हाँ जी, ये वही एक्शन लेजेंड जिन्होंने हमें इंडियाना जोन्स और हान सोलो जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए हैं। और आज सेलिब्रेट कर रहे हैं एवर सो क्लासी सर पैट्रिक स्टूअर्ट, ग्रेस, करिश्मा और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस। हैशटैग ऑनेस्ट गर्ल्स। और अगर यार तुम्हारी फैमिली तुम्हें हर बात पर कहती है कि तुम कॉमेडी बड़ी अच्छी कर लेते हो, तो तुम अपना बर्थडे शेयर कर रहे हो विद द हिलेरियस एक्टर कॉमेडियन केन जंग। साथ ही हम बर्थडे विशेस भेज रहे हैं चीख चीख कर कॉमेडियन चीख मरीन को, पावर हाउस सिंगर डेबोरा कॉक्स को एंड टॉम केनी को, द अनफॉरगेटेबल वॉइस बिहाइंड स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स। और आज जो लोग भी अपना स्पेशल डे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको तो हैप्पी टू यू है ही। अगर किसी और को विश करना चाहते हो तो मुझे अपने बर्थडे आउट भेज सकते हो। मिर्ची पुरिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब खनखनाने की और चमचमाने की बारी आ चुकी है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर।
1: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,065 $4,065 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपके पास पुरानी गोल्ड ज्वेलरी है जो आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी भी ज्वेलर से खरीदी, राज ज्वेल्स के कैरेटोमीटर के साथ आप अपना पुराना गोल्ड टेस्ट कराते हुए एक्सचेंज कर सकते हैं फुल गोल्ड एक्सचेंज वैल्यू में, जहां आप नई 22 कैरेट गोल्ड के डिजाइन हो, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी हो, आप एक्सचेंज करके नए सोने के गहने घर ले जा सकते हैं। और हमारी स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें आप 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट पे, 9 इंस्टॉलमेंट में, बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी, बिना किसी डाउन पेमेंट के गोल्ड का प्राइस लॉक आज करके ज्वेलरी कर ले जाएं और 9 महीने में पैसे दें। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
0: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे बातें करनी है तो इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. एंड अब टाइम हो चुका है फॉर सबसे पहले हॉलीवुड स्टार मैट डेमन मुंबई में सिर्फ फिल्म प्रमोट नहीं कर रहे हैं बल्कि फूडी मोड में भी आ चुके हैं. चाय और बन मस्का के बाद उन्होंने डिनर किया है एट द आइकॉनिक द बॉम्बे कैंटीन. नंबर टू पर अ सैड अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा. सैम नील, जिन्हें हम डॉक्टर एलन ग्रांट के नाम से जुरासिक पार्क से याद करते हैं, हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78. अर्लियर दिस ईयर ही हैड शेयर्ड दैट ही वॉज कैंसर फ्री आफ्टर ट्रीटमेंट. एंड टुडे हिज फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड आर रिमेम्बरिंग an actor who made dinosaurs feel real and inspired generations of movie lovers. And lastly, India has absolutely smashed it at the 56th International Physics Olympiad. Hamare 5 ke 5 student brought home gold medals and India has jointly secured world number 1 rank. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par connect करने के लिए नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और मिर्ची मॉर्निंग्स पर टाइम हो चुका है स्टार्स की बात करने का।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी मेष राशि, ओवरथिंकिंग बंद करो। जो टेंशन तुमने अपनी ट्रेलर बना रखी है उसे रिलीज करने का टाइम आ चुका है। अब वो मूवी बनती जा रही है। अपनों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, वही तुम्हारा सुपर पावर है। लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी वृषभ राशि, आज बोरिंग को बाय बाय बोलो। अगर चॉइस मिले ड्यूटी और हैप्पीनेस में तो थोड़ा सा हैप्पीनेस भी डिजर्व करते हो। लाइफ कोई अनपेड इंटर्नशिप नहीं है यार। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, वॉलेट और लिस्ट का रिश्ता थोड़ा हेल्दी रखना पड़ेगा। मटेरियल चीजों को इतना भी इंपॉर्टेंस मत दो कि पीस ऑफ माइंड ईएमआई पर चली जाए। लकी कलर फॉर यू इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, क्रिएटिविटी का फुल चार्जर लग गया है। अगर कोई आइडिया दिमाग में आ रहा है, डोंट ओवरथिंक, जस्ट स्टार्ट। तुम खुद ही अपनी पोटेंशियल देखकर सरप्राइज हो जाओगे। लकी कलर इज गोल्डन येलो, लकी नंबर इज 31। लियो यानी कि सिंह राशि, सब आंसर्स आज नहीं मिलेंगे बेबी। Honestly, यार जरूरी भी नहीं है कि सारे आंसर्स आज ही मिल जाएं। ट्रस्ट योरसेल्फ, तुम ही अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो, बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट है। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 8। वर्गो यानी कन्या राशि, स्माइल आज तुम्हारा बेस्ट एक्सेसरी है। लोग कैसे बिहेव करते हैं वो उनकी स्टोरी है, तुम कैसे रिएक्ट करते हो ये तुम्हारा सुपर पावर है। लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन रेड, लकी नंबर इज 17। और अब पहली 6 राशियों का शक दूर हो चुका है, तो अगली 6 राशियों की बारी है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और मिर्ची मॉर्निंग्स, टाइम फॉर सम मिर्चीदार बैंगर्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो कंप्लीट करते हैं हमारा राशि जोन विद द रिमेनिंग सिक्स राशिज।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी तुला राशि, करियर में एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज नॉक कर सकती है, दरवाजा खोलना मत भूलना, कॉन्फिडेंस पे फुल वॉल्यूम रखो। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 26। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज रूटीन को थोड़ा सा रीमिक्स करो, नया अप्रोच ही पुरानी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन बन सकता है, इनोवेशन इज योर कीवर्ड टुडे। लकी कलर फॉर यू इज कॉपर, लकी नंबर इज 9। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, पैसा बनाना अच्छी बात है, शॉर्टकट्स लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, स्मार्ट वर्क करो, शॉर्टकट वर्क नहीं, फ्यूचर वाला तुम्हें थैंक यू बोलने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 3। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मल्टीटास्किंग को थोड़ा सा वेकेशन दे दो यार, एक काम अच्छे से करोगे तो रिजल्ट भी शेफ्स किस आने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 3। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, पॉजिटिव एटीट्यूड आज ही का सीक्रेट वेपन है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन माइंडसेट उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्माइल करके शुरू करो, जीत खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। लकी कलर फॉर यू इज कोरल पिंक, लकी नंबर इज 11। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, दिल की बात बोल दो यार आज, बस वॉल्यूम कंट्रोल के साथ बोलना, चिल्ला चिल्ला कर अपने दिल की बात नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहो, रिस्पेक्टफुल रहो और अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज मत होने दो। लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 11। एंड दैट वॉज योर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी के लिए जल्दी से जाओ मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

लगता है आज मिर्ची मॉर्निंग्स ना एक्सप्रेस ट्रेन की तरह निकल गई। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें स्पोर्ट्स अपडेट देकर जाती हूँ। सबसे पहले यानिक सिनर हैज डन इट अगेन, वर्ल्ड नंबर वन ने विंबलडन का टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड करते हुए अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा दिया है। ये उनका सेकेंड स्ट्रेट विंबलडन टाइटल है, फिफ्थ ग्रैंड स्लैम और 100 ग्रैंड स्लैम मैच विक्ट्री भी था। एंड प्राइज मनी अराउंड 3.6 मिलियन पाउंड्स, यानी कि विंबलडन की ट्रॉफी तो घर गई, साथ में बैंक अकाउंट भी फुल एस मार के गया है। और एक स्टोरी जिसने दुनिया भर के फैंस की आंखें नम कर दी, लिंडा नोस्कोवा ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद अपनी लेट मदर को इमोशनल ट्रिब्यूट दिया। पोस्ट मैच इंटरव्यू में उनकी आंखों में आंसू देखकर पूरी टेनिस दुनिया इमोशनल हो गई। कभी कभी ट्रॉफी सिर्फ जीती नहीं जाती है यार, किसी अपने को डेडिकेट भी की जाती है। और वो अपना अब अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो ये डेडिकेशन थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसी नोट पर ये याद रखो कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन पूरी हिम्मत के साथ खेलना बहुत जरूरी होता है। वाह, क्या बात कही है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग कम्यूट, योर किचन प्लेलिस्ट या फिर योर ऑफिस का ड्राइव और कभी कभी ट्रैफिक जैम का हिस्सा भी। और फिर भी हम दोस्त बन सकते हैं। फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची तार बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: सोने के लिए बेस्ट जगह कौन सी हुआ करती थी?
1: क्लासरूम।
2: सारा जमाना सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और बात हो अगर मंडे की और सोने की, उसके साथ अगर बात हो तो ये सोने पे सुहागा नहीं होता है, सोने पे अभागा होता है, क्योंकि मंडे एक ऐसा दिन होता है कि काम करने का मन नहीं कर रहा होता है, सोने का मन ज्यादा कर रहा होता है, लाइक रेस्ट इज बेस्ट, ये हमारा दिल कह रहा होता है। बट अफसोस संडे खत्म हो चुका है, मंडे आ चुका है, एंड स्कूल में भी यही हुआ करता था कि यार मंडे के दिन ना नींदें बहुत आया करती थी, एंड यस क्लासरूम यूज टू बी द बेस्ट प्लेस, जहां बढ़िया नींद आया करती थी, स्पेशली हिंदी और ज्योग्राफी के पीरियड में। एंड एक्चुअली ना मैथ्स के पीरियड में दिमाग तो सो जाता था, लेकिन आंखों की मजाल नहीं होती थी कि वो बंद हो जाए। खुदा का खौफ हो ना हो, मैथ्स टीचर का खौफ हमेशा रहा करता था बॉस। एंड यू नो मेरी एक बार ना बड़ी बेइज्जती हुई थी, खुशी खुशी बता रही हूँ आज, लेकिन उस टाइम पर तो बहुत ज्यादा बेइज्जत हुई थी मैं, जब ज्योग्राफी की क्लास में ना मैं सो गई थी और थोड़ी देर बाद ना सब शांत हो गया। वो शांति इतनी डिस्टर्बिंग थी कि मेरी आंख खुल गई, एंड इट वाज देन दैट आई नोटिस्ड कि मैम ने पढ़ाना तो बंद कर दिया था और वो मेरी डेस्क के पास आकर खड़ी मुझे देख रही है। जैसे ही मेरी आंख खुली ना, तो मैंने देखा कि पूरी क्लास मुझे ही देख रही थी मैम के साथ साथ। फिर मैम ने मुझे हड़काया और टैप पर मुंह धोने के लिए भेज दिया। बाकी हिंदी पीरियड में तो नींद इसलिए आ जाया करती थी क्योंकि इंटरवल के बाद का पहला पीरियड हुआ करता था ना, इसमें मधु मैम का कोई कसूर नहीं था, कसूर तो टिफिन के पराठों का था यार, उनका नशा ही इतना तगड़ा हुआ करता था। और इसी के साथ अब नींद बुलाने की नहीं, नींद भगाने की बारी है, क्योंकि अब मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई मैं आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: रामगोपाल वर्मा ने बॉलीवुड फिल्म को बनाने का जो फॉर्मूला होता है ना, उसे हाथों में लिया, हथेली पर रखकर ताली बजाई और फिर ये मसाला खा गए और उसके बाद उन्होंने बनाई द मूवी भूत।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। भूत एक ऐसी फिल्म जिसमें बॉलीवुड टाइप कुछ नहीं था, ना गाने, ना ढाई तीन घंटे की लंबी फिल्म। मूवी की स्टोरी इज बेस्ड अराउंड द हीरोइन और मूवी एक हॉरर स्टोरी थी एंड द फिल्म वाज अ सक्सेस। इस मूवी को प्रमोट करने के लिए बड़ी स्पूकी पोस्टर्स बनाए गए थे ताकि हम जैसे लोग उन्हें देख कर बोले, यार ये तो बड़ी डरावनी फिल्म लग रही है, बड़ा मजा आएगा इसे देखने में। और पूरी मूवी देखते हुए ना मुझे जरा डर नहीं लगा था, लेकिन एक पॉइंट पर मेरी चीख निकल गई थी और थिएटर में एक लड़कों के गैंग को इस बात पर ना बड़ी हंसी आई थी और मौका मिल गया था उन्हें कल्ले फाड़ फाड़ के हंसने का। वो सीन जब उर्मिला आईने में खुद को गौर से देख रही थी और फिर वो आईने के करीब जाती है, फिर और करीब, वो अपना हाथ उठाती है आईने को छूने के लिए और एकदम से डोरबेल बज जाती है। आई एम श्योर रामगोपाल वर्मा ने ये सीन इसी माइंडसेट से डायरेक्ट किया होगा कि देखने वाले की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए, और मेरी तो हो गई। आपकी हुई कि नहीं हुई वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फिलहाल मुझे ये पता है कि कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आपको पता है भूत की सक्सेस के बाद राम गोपाल वर्मा ने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गए बॉलीवुड के एक्टर्स, अब मैं हॉलीवुड के एक्टर्स को लेकर एक फिल्म बनाऊंगा।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। 2003 में जब भूत हिट हो गई तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हॉलीवुड एक्टर्स को लेकर फिल्म बनाएंगे एंड द फिल्म वाज टाइटल्ड विदिन। इट हैड टू बी रिलीज्ड बाय लेट 2006 एंड इंस्टेड ऑफ अ मुंबई अपार्टमेंट द फिल्म वाज टू बी सेट इन न्यूयॉर्क इन एन अपार्टमेंट इन मैनहट्टन। इस फिल्म में कोई इंडियन एक्टर नहीं होता, लेकिन उस टाइम पर राम गोपाल वर्मा ने इस कास्ट की डिटेल्स बताने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। परसेप पिक्चर कंपनी वाज टू प्रोड्यूस द फिल्म एट अ बजट ऑफ $6 million। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको सारी बातें बताते हुए इतना हाइप दिया, उतना ही हाइप इस फिल्म को मिला एंड देन द मूवी गॉट शेल्व्ड। मूवी गॉट शेल्व्ड का मतलब, अरे सिंपल, मूवी को ताक पे रख दिया। उसके बाद तो वो ना उतर पाई ना उसे किसी ने उतारा, वो वहीं की वहीं ठहर गई है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: आजकल स्ट्रेस इतना है कि बालों ही बालों का गुच्छा नजर आता है, बट वो स्ट्रेस फ्री टाइम भी था जब कहानियों का गुच्छा आया करता था।
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और संडे की सुबह ब्रंच टाइम पर टाइम हुआ करता था

कहानियों के गुच्छे का। आज उस टाइम के बारे में सोचो ना तो अनरियल लगता है कि ये टाइम भी हमने जिया था। जब एक कहानी के गुच्छे का इंतजार करते करते संडे की आधी सुबह गुजर जाया करती थी, क्योंकि ये शो ना थोड़ा लेट आया करता था, बिल्कुल संडे मूड में। बट डू यू नो, इस शो के गाने को भी फेमस डुओ गुलजार साहब और विशाल भारद्वाज ने ही बनाया है। लिखा गुलजार साहब ने और म्यूजिक कॉम्पोजिशन विशाल भारद्वाज का है। ये तब की बात है जब विशाल सिर्फ गाने कंपोज किया करते थे। और कहानियों के गुच्छे के बारे में सोचने के बाद ना, अब मेरा मन आज की मेरी जो टू डू लिस्ट है ना, उसमें तो नहीं लगने वाला यार। आपका भी नहीं लगेगा ना? तो रहने देते हैं ना यार, आज में वापस आने में अभी टाइम है। तब तक हम 90s में ही रहते हैं ना, मेरे यानी सारा के साथ ऑन मिड डे मोहब्बत। तो स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब की जोड़ी का एक और कमाल। स्टे ट्यून्ड रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: व्हाट अ लकी गाय आई मस्ट से, क्योंकि यार आज के जमाने में तो मैंने ज्यादातर ऑनलाइन लड़कों को यही ट्रोल करते हुए देखा है कि लड़कियां भाव ही नहीं देती हैं। कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो चाहती हैं, किसी को देखती हैं चुपके चुपके, लेकिन बोलती कुछ नहीं। ये तो ज्यादातर लड़कों की अदाएं होती हैं।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बोलना तो मुझे भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं बोलूंगी मान ना मान करो गानों की पहचान। और आज के वो दो गाने जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपस में मिक्स करे हैं, उनकी धुनें कुछ यू हैं।

अब एक काम करो, फटाक से मुझे डीएम करो अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम, और बताओ कि ये जो दो धुनें हैं ये कौन से गानों की हैं। अभी के लिए कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: खिलाड़ियों का खिलाड़ी, देखो ये अक्षय कुमार की बात नहीं कर रही हूँ मैं. अगर म्यूजिक की दुनिया की बात की जाए ना, तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी इज अनु मलिक.
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी से ये जो गाना है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन याद दिला देती हूँ. सुनो इसे गौर से. सो बेसिकली अनु मलिक का कंपोज किया गया ये गाना इज ऑफ कोर्स नॉट एन ओरिजिनल, तभी तो ये इस कैटेगरी में आया है. एक्चुअली इसकी धुन जरा सी पकड़ी गई है फ्रॉम फर्नांडो. हालांकि इस गाने के लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि कट कॉपी पेस्ट है, थोड़ा इधर उधर कॉपी किया गया है. सो नो हार्म डन टू दी ओरिजिनल ट्रैक बेसिकली. हाँ, लेकिन कॉपी तो कॉपी रहेगी ना, जिस दिन पकड़ी जाए उस दिन गाना ओरिजिनल नहीं रह जाता. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: लगता है कि 90s में द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सनालिटी वॉज बाबा सहगल।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। अरे हाँ यार, आज अगर बाबा सहगल के गाने सुनो ना तो समझ में आता है कि ही वाज 20-30 इयर्स अहेड ऑफ हिज टाइम। वो रैप जिसे आज इतनी अहमियत दी जाती है, जो हर कोई रैपर बनना चाहता है लेकिन सिवाय टॉफी के रैपर के और ज्यादा कुछ बना नहीं पाता है, वो बाबा ने 90s में करके कब का छोड़ भी दिया। एंड सिंस उस टाइम पर रैप का इतना कोई फैशन था नहीं, तो बाबा के गाने चले भी और नहीं चले भी, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो काफी अंडर एस्टिमेटेड रहे। अब भला बताओ, ये गाना जो हमने बचपन में सुना,
3: यूपी के बिहार के मेरे फ्रेंड्स फास्ट फ्रेंड्स चुप चुप गाड़ी में बैठे, रात के बजे थे 11:30, मुझे सर्दी लगी, मैंने बोला यार कुनाल मुझे दे दे एक शॉल, बोला आने दे बरेली स्टेशन लेंगे एक माउथ लोशन, समझ गया ना नो नो नो नो नो नो नो नो चाहिए ना कोई मुझे ऐसी वैसी चीज, काश मिल जाती मुझे।
0: और मेरा फेवरेट इज दिस वन,

और अगर बाबा आज के टाइम पर रैपर होते ना तो मैं इनको बाबा सैगल नहीं बुलाती, मैंने तो इनका नामकरण कर दिया होता कि बाबा की गल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या आपको भी डल डल महसूस हो रहा है? यूं लग रहा है कि जीवन में जान सी महसूस ही नहीं हो रही है। तो अपनाइए ये नुस्खा।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड यू नो, ऐसा हमें अक्सर तब फील हो रहा होता है जब हम खुद को बहुत बड़ा बड़ा महसूस कर रहे होते हैं, जब सारी टेंशन हमें हमारे हिस्से में ही महसूस हो रही होती है। तब जरूरी होता है खुद को ये एहसास दिलाना कि यार लाइफ को इतना भी सीरियसली ना लो, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स अपॉन अस। और बस यही वो मोमेंट है यार कि जहाँ आप खड़े हुए हो बस वहाँ ये चेक कर लो कि आगे पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही जा रही, कोई इंसान तो नहीं आ रहा है। बस ये चेक कर लिया ना, अब इसके बाद जहाँ खड़े हो वहीं से दो कदम आगे की तरफ एक सॉलिड जंप लगाओ। आपके अंदर का जो बच्चा है ना वो बाहर आएगा और अपने साथ साथ एक स्माइल भी लेकर आएगा इस सीरियसनेस को गायब करने के लिए। करके देखो और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा। बता सकते हो आप मुझे DM करके ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। चलो अब आपको एक और मूड लिफ्टर देती हूँ, ये अगला गाना फ्रॉम द फिल्म जाने तू या जाने ना। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: फना मूवी से कैसेट के साइड बी का चौथा गाना
3: मिर्ची 90s कैसेट
2: चांद सिफारिश। ओए होए होए होए क्या गाना लिखा है यार प्रसून जोशी ने। और जब म्यूजिक का तड़का हो जतिन ललित का और उसपे शान और कैलाश खेर की आवाज हो तो ये गाना ऑफ कोर्स इज मैजिकल। नाउ इतना प्यारा गाना लगता है ना यार ये मुझे, जहाँ पर चांद को हीरो का दोस्त बताया गया है और हीरो ये कह रहा है कि अगर चांद ने मेरी सिफारिश तुमसे करी होती ना तो वो तुम्हें मेरे दिल के इरादे कब का बता चुका होता। मगर चांद की खास बात है, आपने नोटिस करी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चांद के साथ हमारे रिश्ते जो है वो बदलते गए। अब यहाँ चांद जो है वो हीरो का दोस्त है। कभी चांद हमारे लिए चंदा मामा हुआ करते थे और फिर वक्त ऐसा आया कि चांद को देख के यार की सूरत चांद में देखी है और कविताएं भी लिखी है। वही वाली बात है ना कि जिंदगी कैसे खूबसूरत मोड़ लेती चली जाती है ना, पता ही नहीं लगता है। लेकिन अगर चांद सिफारिश गाने की बात की जाए ना तो इसकी ये जो लाइंस हैं ये मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं यार, जहाँ पर ये कहा गया है कि तेरी अदा भी है झोंके वाली छू के गुजर जाने दे। और वाकई में यार कौन सोचेगा ऐसा कि किसी की अदाएं इतनी हसीन होती हैं कि अगर छू के भी गुजर जाए ना तो मन मचल जाता है। तेरी लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाने दे। और भाई ये बात तो मुझे लगता है कि लड़के ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये जो लड़कियों की लचक होती है वो दिल में कैसे उतार ली जाती है। और इस गाने को 10/10 देते हुए नाउ आई एम प्लेइंग दिस ट्रैक फॉर यू। और इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: वाह वाह वाह वाह रफी साहब, वाह वाह वाह वाह। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाने से जो आपने पर्दा उठाया है,
1: गजब ढा दिया है, गर्दा उड़ा दिया है।
2: अच्छा रफी साहब का बचपन ना अमृतसर जिले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में बीता है, जहाँ उनका जन्म भी हुआ था।
0: उनका निक नेम था फीको, हाउ क्यूट। और तब उनकी सिंगिंग की शुरुआत पता है कैसे हुई? उनके गाँव में एक फकीर अक्सर घूमता था और कुछ कुछ गाता रहता था,
1: और ये छोटा सा फीको उनको मिमिक करने की कोशिश करता था, उनके जैसे गाता था।
0: इसीलिए शायद तभी से ये सीधा सादा फकीर बंदा रह गया था।
2: रफी साहब की नेक दिली, दरिया दिली के बहुत सारे किस्से। फिलहाल तो उनकी आवाज में किस्सा उन आँखों का, जिनके सिवा दुनिया में रखा क्या है।
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: बेटा बात है ये 1985 की।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: 85 बोले तो
1: 1985। 1985 में फिल्म फेयर अवार्ड्स जब हुए थे तो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में जितने भी नॉमिनेशन थे वो किशोर कुमार के थे, और एक ही फिल्म के चार गानों के लिए वो नॉमिनेटेड थे। ये फिल्म थी शराबी और गाने थे दे दे प्यार दे, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, मंजिलें अपनी जगह है एंड इंतहा हो गई इंतजार की। मतलब सारे नॉमिनेशन किशोर कुमार के एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि किसको अवार्ड मिला है। बट किस गाने के लिए मिला, जिस गाने के लिए मिला वो हम यहाँ पे सुनेंगे। प्रकाश मेहरा साहब का लिखा हुआ, बप्पी लहिरी की कॉम्पोजिशन, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: Mirchi, it's hot.
0: Purani jeans.

0: देखते थे कि उनको ही वो रोल निभाने को कह दिया जाता था। उनकी जर्नी एज अ कॉमेडियन इसी तरह से शुरू हुई थी। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मद्रास की हिम्मत वाला सर, वो मुझे स्क्रिप्ट मिली, मैंने अजीब अंदाज में लिखा उसको, और मैं बोला यार ये मेरे डायरेक्टर इसको पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके पूरी स्क्रिप्ट दे दी इनको। अब डायरेक्टर ने पढ़ा, उसके साथ में कैसेट लगाया, रात भर वो आदमी सुनता रहा, और उसके बाद प्रोड्यूसर को सुबह बुलाया, दोपहर को फ्लाइट पकड़ के दोनों बम्बई पहुंचे। मैं कहीं शूटिंग कर रहा था, अरे बोले सर आप यहाँ, बोले हाँ ये क्या है, तुम क्या लिखा है, ये कौन करेगा ये रोल मुनीम का, यू हैव टू डू दैट रोल। और वो फिल्म में मैंने मुनीम का रोल किया, तो एक हफ्ते तक तो जितेंद्र और श्रीदेवी के तमाम जगह बैनर्स लगे हुए थे, एक हफ्ते के बाद सिर्फ कादर खान के बैनर लगे हुए थे, और यहाँ से मेरी कॉमेडी का ट्रैक चला।
0: पहले ये ना डिसाइड करना मुश्किल हो जाता था कि खान साहब एक अच्छे राइटर थे या एक्टर, एक्टिंग में भी विलन ज्यादा अच्छे थे या कॉमेडियन, सभी में टू गुड थे यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: रेखा का मिड 80s का एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस इंटरव्यू में जब उनसे उनकी हॉबीज के बारे में पूछा गया, तब सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है और गार्डनिंग का शौक है, इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है और कपड़ों का शौक है, मतलब डिजाइन करने का शौक है, मेकअप का तो शौक है ही, ये तो सब जानते हैं। एंड आई लाइक लुकिंग एट प्रिटी फेसेस, और हेयर स्टाइल्स का शौक है, एवरीथिंग ब्यूटीफुल, जो भी खूबसूरत चीज़ है, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट, एनीथिंग, जस्ट नेम इट, वो सब कुछ करना चाहती हूँ मैं। ऑफकोर्स सबसे ज्यादा मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ।
0: Well, बीच में रेखा के एक फिल्म बनाने की बातें हुई थी, लेकिन ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया। इसी इंटरव्यू में इनसे ये भी कहा गया कि काफी लोग ये कह रहे हैं, उनकी ये राय है, सलाह है कि अब रेखा को सेटल हो जाना चाहिए। इस बारे में सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: बहुत से लोग बहुत सी राय देते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे। राय सुनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, और इस वक्त हम शादी करना नहीं चाहते।
0: Well, इसके बाद 1990 में रेखा ने शादी की थी, लेकिन वो उनकी लाइफ का एक मेजर सेटबैक बन गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मस्त गाना है पड़ोसन फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसका वीडियो भी बड़ा मस्त है, 12-13 लड़कियाँ ऐसे मजे में साइकिल चला रही हैं और गाना गा रही हैं। और काफी जगह इस गाने में मुझे ऐसा लगा कि सायरा बानो जी, जो इस गाने जिन पर ये गाना मेनली पिक्चराइज्ड है, वो शायद साइकिल चला ही नहीं रही है, उनके लिए कोई दूसरा कोई डबल वो साइकिल चला रहा है, खास करके जहाँ जहाँ उनका क्लोजअप लिया गया है, ऐसा मुझे लगा। बाकी काफी जगह लगा भी कि वो चला रही हैं। एनीवे, मैं इसका वीडियो जब देख रही थी ना, तो यूट्यूब के कमेंट्स में एक कमेंट था कि ये मैसूर के कृष्ण राजा सागर डैम का जो आसपास का एरिया है वहां पे गाना शूट हुआ है, और आज की डेट में भी वो जगह जो है उतनी ही खूबसूरत है जितनी की इस गाने के वीडियो में दिख रही है, मतलब उसको इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। ये हुई ना बात, और बातों पे फिलहाल ब्रेक, मतलब कि म्यूजिकल ब्रेक। हम सुनेंगे एक रोमांटिक गाना, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची

Energy. It's hot. Purani Jeans. With Charu. Only on Mirchi.

उफ उफ उफ, आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज, आरडी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, फिल्म का नाम राजा रानी। और वैसे भी ना मुझे वो गाने बहुत पसंद हैं जिसमें ऐसे राजा रानी का जिक्र होता है। जैसे याद करें तो अभी तो मुझे 90s के गाने याद आ रहे हैं, राजा को रानी से प्यार हो गया, या किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। एक्चुअली एक शेर भी है मेरे पास राजा रानी वाला, नाजिर वहीद नाम के शायर हैं, इनका शेर है कि लिखते लिखते ही लड़ी आंख जो रानी से मेरी, लिखते लिखते ही लड़ी आंख जो रानी से मेरी, फिर तो राजा को निकलना था कहानी से मेरी। चलिए एक और गाना सुनते हैं जहाँ पे रानी अपने राजा को पुकार रही है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

1973 की फिल्म ब्लैकमेल का ये सुपरहिट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। गाना सुपरहिट है लेकिन पिक्चर खास चली नहीं थी, जिसकी वजह ये कही जाती है कि तब तक धर्मेंद्र साहब ही मैन एक्शन हीरो के तौर पे एस्टैब्लिश हो चुके थे, लेकिन उनका ये वाला रोल पूरा रोमांटिक। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब तब तक लीड रोल्स करने लग गए थे और उनको विलन के रोल में लिया गया था। ऑल्सो राखी गुलजार तब प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। सो ऑल दीज फैक्टर्स काइंड ऑफ पुल्ड द फिल्म डाउन। हो जाता है लाइफ में कई बार, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। वो क्या है, गाने की लाइन्स थी, सोचा था क्या क्या हो गया, ढूंढो मुझे मैं कहीं खो गया, मैं भी कहीं खो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, तिनक दिन दिन तिनक दिन, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सिट्टी बज गई, चालबाज फिल्म का गाना था। लेकिन यहाँ जो अभी हम गाना सुनेंगे वो है एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग दो रास्ते फिल्म का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

एक सिंगर थे जिनको नोबडीज वॉइस कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है नोबडीज वॉइस की जगह ही वॉज एवरीबडीज वॉइस। बहुत ही यूनिक आवाज, सुपर टैलेंटेड मन्ना दे साहब। और मन्ना तो उनको प्यार से बुलाते थे, उनका असली नाम था प्रबोध चंद्र दे। और ये मन्ना उर्फ प्रबोध जब कॉलेज में थे ना तो अपने दोस्तों को बहुत एंटरटेन करते थे, ऑफ कोर्स गाने सुना सुना के। और साथ ही साथ इन्हें कुश्ती और बॉक्सिंग का भी बहुत शौक था और उसमें भी बहुत पार्टिसिपेट करते थे। तो मतलब है भिशुम भिशुम धोबी पछाड़ वाले मुश्तंडे पहलवान तो थे बाहर से एकदम रफ एंड टफ, लेकिन अंदर से मोम दिल, इतने टैलेंटेड, इतने संवेदनशील। तो मन्ना डे की आवाज में वक्त फिल्म का ये क्लासिक एवरग्रीन गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप

मिर्ची इट्स हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद जानू ओनली ऑन मिर्च।

1967 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जूल थीफ का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म में सबसे डिफिकल्ट कास्टिंग अशोक कुमार साहब की थी, जिन्होंने मेन नेगेटिव रोल निभाया था, क्योंकि उस टाइम जब ये फिल्म प्लान हो रही थी उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो जब फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विजय आनंद उनसे मिलने गए तो उन्हें अशोक कुमार को काफी कन्विंस करना पड़ा। फाइनली अशोक कुमार माने, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे कि सुबह 11 बजे वो मेकअप वेकअप करके एकदम तैयार होके सेट पे पहुंच जाएंगे और शूटिंग शुरू हो जाएगी। 1 बजे उनका लंच टाइम, 2 बजे शूटिंग रिज्यूम, 5 बजे पैकअप, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कोई बिशुम बिशुम मार धाड़ मुक्के वाले फाइट सीन्स नहीं करूंगा। तब विजय आनंद साहब ने उनको बताया कि भाई आपका ये जो विलन वाला रोल है इसमें ऐसा लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, ये विलन मसल से नहीं माइंड से लड़ता है, एकदम इंटेलिजेंट सोफिस्टिकेटेड विलन है। तो बस ये सारी बातों से फिर अशोक कुमार साहब मान गए। आप भी मान जाइए जल्दी से, मुस्कान को ले जाइए कान तक, और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: नाना, नाना।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

कतई सुंदर गाना घर फिल्म का, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार ने इसे लिखा है। अच्छा, ये घर मूवी, इसमें विनोद मेहरा एंड रेखा थे। एक्चुअली इस फिल्म में पहले विनोद मेहरा के ऑपोजिट मौसमी चैटर्जी को लिया जाने वाला था, लेकिन उन दिनों दोनों के ऐसे रिलेशनशिप के रूमर्स थे, तो रूमर्स को हवा ना लगे, आग में घी ना डले, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और आप बताइए, आपके शहर का मौसम क्या कर रहा है? आग बरसा रहा है, पानी बरसा रहा है, हवा चला रहा है, या आशिकाना हुआ जा रहा है? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

1989 की टॉप सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया का ये गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ और इस गाने में ना मेरा फेवरेट पार्ट पता है कौन सा है? ये वाला। एंड डू यू नो ये आवाज उषा मंगेशकर जी की है। जी वन ऑफ द मंगेशकर सिबलिंग्स। और उषा मंगेशकर जी के गाए गानों में मोस्ट पॉपुलर वंस आर मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की डली या वो आरती मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। चलिए इन सिबलिंग्स में से अब आशा भोसले जी की आवाज में गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

कभी छोटे होते समझ ही नहीं आता था कि ये सावन तो ठीक है, भादो क्या होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। महबूबा फिल्म का ये गाना और बड़े होके समझ में आया कि सावन यानी कि श्रावण मास और भादो यानी कि भाद्रपद विक्रम संवत का पांचवा और छठा महीना, दोनों ही में बरसात होती है, लेकिन दोनों की बरसात थोड़ी अलग अलग होती है। सावन बोले तो जुलाई अगस्त वाली बरसात, भादो बोले तो अगस्त सेप्टेम्बर वाली बरसात। वैसे सावन भादो को लेकर साहिल देहलवी नाम के शायर ने कहा है, झड़ी ऐसी लगा दी है मेरे अशकों की बारिश ने, झड़ी ऐसी लगा दी है मेरे अशकों की बारिश ने, दबा रखा है भादो को, भुला रखा है सावन को। वैसे मेरे नैना सावन भादो ये गाना आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, और नेक्स्ट जो हम सुन रहे हैं वो भी बख्शी साहब का कमाल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

की कहानी म्यूजिशियन बनना था, सिंगर बनना था, लेकिन विशाल भारद्वाज को फिल्मों में नहीं आना था, लेकिन क्योंकि उनकी वाइफ को ऐसा करना था, इस दुनिया में आना था, तो वो भी इंडस्ट्री में घुसे और बहुत जल्द बड़े भी बन गए। बट रेखा जी का करियर नहीं चला, उनको प्यार तो मिल गया लेकिन करियर नहीं मिला, एंड शी गॉट डिप्रेस्ड इन अ वे और वो ओशो के पास चली गई अपनी शादी छोड़ के। अब देखो, ऐसी सिचुएशन में कोई दूसरा मर्द होता तो वो शायद से शादी को ही तोड़ देता, बट विशाल भारद्वाज ने एक साल तक रेखा भारद्वाज का इंतजार किया। बट जब वो लौट कर नहीं आई ना, देन ही हिमसेल्फ वेंट डाउन टू ओशो। उसके कुछ टाइम के बाद विशाल भारद्वाज ने फिल्म बनाई ओमकारा, उसमें रेखा भारद्वाज की आवाज थी फॉर द सॉन्ग नमक इश्क का, and rest we all know is history। तो yeah, it was a beautiful love story जिसमें पत्नी कई बार जाना चाहती रही, but विशाल भारद्वाज का अपनी wife के लिए जो प्यार था वो इतना खूबसूरत था that it changed everything around them। तभी मैंने कहा love isn't always about perfect timing। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, stay tuned, it's hot।

मैं तो उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा वेख जरा मेरे अंदर शूशा शूशा हर वेले हंसा गवा हूँ।

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: ये महफिल और इस महफिल में पाए जाने वाले दो प्रजाति के लोग।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो माय डियर बाबू मोशाय, आज की ये प्रजातियाँ डिसाइड की जा रही हैं वॉशरूम जाने वाले लोगों के मद्देनजर। ओके ओके ओके, मुंह नाक बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गंदगी नहीं फैलाऊंगी यहाँ पे। बट एक्चुअली ये जो पहली प्रजाति के वॉशरूम जाने वाले हैं ना, इनको जिस भी काम से वॉशरूम जाना है वो उस काम से जाते हैं और फटाफट बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरी प्रजाति वाले हैं, भाई साहब ऐसा लगता है कि अगर ये अपने फोन के बिना वॉशरूम में चले जाएंगे तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। और फिर ये अपने वॉशरूम में बैठ के स्क्रोलिंग की प्रक्रिया जो शुरू करते हैं उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, खो जाते हैं भैया, लिटरली बता रही हूँ, घंटों लगा देते हैं। तो ऐसे अगर आप दूसरी प्रजाति वाले हैं तो आपको बताना चाहती हूँ कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा करने से, ज्यादा देर तक वॉशरूम में बैठने से, ना सिर्फ आपको पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी बट आपके मेंटल हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो देख लीजिए, इश्क फरमाना है अपने फोन के साथ वॉशरूम के अंदर या फिर अपने आप के साथ प्यार निभाना है, बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची भी मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: एक ऐसी सीरीज जिसकी जर्नी हर दूसरे इंसान के लिए डिफरेंट है।
1: ओटीटी एंड चिल।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन, आप मैं हूँ आपके साथ श्रुति, एंड यस यू हर्ड इट राइट। बेसिकली ये एक ऐसी सीरीज है जिसको अगर आप एक पॉइंट पे शुरू करते हैं तो उसकी स्टोरी लाइन जिस तरीके से जाएगी, इट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। नहीं, ऐसा नहीं है कि इस सीरीज की मल्टीपल एंडिंग्स है, ना ही इसकी कोई ऑल्टरनेटिव वर्जन्स है। इट इज जस्ट वन ब्रिलियंट ट्विस्ट जो सारी चीजों को बदल के रख देता है। एंड द नेम ऑफ द सीरीज इज क्लाइडोस्कोप, विच इज स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, एंड इट इज अ हाइस्ट थ्रिलर। सो बेसिकली इस सीरीज की यूएसपी ये है दैट इसके जो एपिसोड्स हैं वो शफल करते हैं फॉर एवरी यूजर। यानी अगर आपने जब इस सीरीज की शुरुआत की और आपने देखा कि भाई रॉबरी का आफ्टरमैथ पहले दिखाया जा रहा है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपके दोस्त ने इस सीरीज की शुरुआत की तो कुड बी दैट कहानी की शुरुआत उसके लिए उस हाइस्ट के एक साल पहले से हो। एंड वरी नॉट, भले ही शुरुआत आपकी अलग अलग तरीके से हुई है बट यू विल एंड ऑन द सेम पेज। इनफैक्ट मेरे जैसा इंसान तो इस सीरीज को रीवॉच करना चाहेगा कि भाई पहली बार जिस तरीके से इस सीरीज ने मुझे एंड तक पहुंचाया है, क्या सच में दूसरी बार में मैं दूसरे तरीके से उसके एंड तक पहुंचूंगी। एक बार फिर से याद दिला दूं, सीरीज का नाम है क्लाइडोस्कोप, विच इज स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: डब्बा है डब्बा, बस इस डब्बे में आपको कभी भी कुछ भी मिल सकता है।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और इस दुनिया में दो तरीके के लोग, और वो लोग दो तरीके के डब्बे रखने वाले, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास के लोग हैं, जिनके घर में जिस चीज का डब्बा आता है वो जब इस्तेमाल हो जाता है तो उस डब्बे को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है वो मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोग, जिनके घर में जिस चीज का डब्बा आता है वो तब तक इस्तेमाल होता है जब तक खत्म ना हो, लेकिन उसके बाद उस डब्बे को यूं ही फेंक नहीं दिया जाता भैया, प्रॉपर उसको धोया जाता है, धूप दिखाया जाता है और सुखा उखा के वापस उसमें कुछ नई चीज डाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में वो कुकीज का डब्बा जिसमें सुई धागा रखा है मम्मी ने, या फिर आपके फ्रिज में वो आइसक्रीम का डब्बा जिसमें आइसक्रीम नहीं छीले हुए मटर होते हैं। सो आप बताओ, आप इन दोनों में से किस कैटेगरी के हो? मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और यहाँ के अलावा MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।